0: गुंग मुख तब कैसे गुण गई है।
1: सतगुरु कहने जे हुण नहीं जपदा फिर कदू जपेगा।